0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: लाइका गोल्ड।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
2: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को एक है हादरा हदूर।

पावेरा सुनिए हाथ वै सगा नानक भक्तां सदा विगास सुनिए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे।

मन सगल पवन की शुद्ध मन मोह चोटा ना खाए मन जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक ना पाए मन पत्स्यों प्रगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म से ती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

गान पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा मच प्याले, गावन रतनु पाए तेरे 68 तीर्थ नाले।

अनाहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

आद अनाहत जुग जुग एको वेश, आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश, एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें एक नाम जगदीश।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: Breakfast with Deep Roger.
1: When you have a better laptop like the Dell XPS powered by Intel Core, it feels better. With thin and light design, it feels smooth. With a touchscreen, it feels fast and precise. And with long-lasting battery life, it feels like non-stop energy. Yeah, that's definitely better. Built for those who want better. The Dell XPS. Built for you.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.
4: One performer,
5: countless personalities,
4: a whole universe of entertainment.
5: Sunil Grover, live UK tour 2026.
4: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
5: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
4: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
4: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: London, तैयार हो जाओ. आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026.
7: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
6: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न.
7: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो.
6: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी.
7: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG.
6: टिकट्स बुक करो segalondon.co.uk.
7: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और
8: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998

0: डेट। पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
1: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 07947561947।
0: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 02089070116।
1: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
2: खाकरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
3: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाकरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
2: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
4: ब्रेकफास्ट विद डीप राजा।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.

0: Mabster no pani puri ane pani puri no pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइकागोल्ड.com पे.
3: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
2: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
3: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ
4: मोती वेराना चौक मा
3: 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इल्फर्ड IG6 3SL
2: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
3: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंटब्राइट और फैक्सोमा।
2: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
5: तेरा क्या होगा रे कालिया?
6: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
5: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
7: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
8: पूनम स्वीट सेंटर 86 वेस्टर्न रोड साउथ हॉल। कॉल 02085744934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
9: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी पार्ट of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place. 11, 11.
10: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
14: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागसन.
2: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com. Start.

0: फ्रॉम द मूवी कटी पतंग. ब्यूटिफुल ट्रैक. प्यार दीवाना होता है.
1: हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है.
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is Laika.
0: Hope you're enjoying. Yes, aur main Hushina. और आप लोग मेरा साथ देंगे राइट अंटिल 1 o'clock. बहुत ही खूबसूरत सा समय है और बहुत ही खूबसूरत सा आप लोगों का साथ भी है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ट्यूनिंग इन. बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग करनी भी हैं. बट पहले तो जस्ट वांटेड टू वेलकम ईच वन ऑफ यू जो सुन रहे हैं. अपने आप को ना एक स्माइल दे दीजिए. हम हमेशा दूसरे लोगों को स्माइल देते रहते हैं पर कभी कभी अपने लिए भी एक स्माइल होनी चाहिए. नहीं, सो गिव योरसेल्फ अ स्माइल एंड वेलकम ऑन बोर्ड द जर्नी ऑफ अनप्लग्ड म्यूजिक. काफ़ी होगा ऐसा म्यूजिक जो आपके मन को चिल करेगा, वो जैसा है जो दिल को छुएगा. आई कैन गारंटी दैट. नाउ अगर मैं गारंटी करी तो कुछ ना कुछ अच्छा आने ही वाला होगा, इजंट इट. जो नेक्स्ट गाना आने वाला ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है. इस गाने में सब कुछ सिमटा हुआ है, जिंदगी सिमटी हुई है और आने वाला पल जाने वाला है. हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो, पल जो ये जाने वाला है. इस गाने को क्या इंट्रोडक्शन दूँ, क्या बताऊँ इसके बारे में, जितना बोलूँ उतना कम है. और ये तो हिट कॉमेडी गोलमाल का गाना है. यू नो व्हाट, जब भी मैं थोड़ा सा भी सैड होती हूँ, उदास होती हूँ, हैप्पी साइड होती हूँ, मैं ये मूवी देख लेती हूँ. अमोल पालेकर ने क्या एक्टिंग की थी इस मूवी में. अभी भी ना, यू नो, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू जो कि मुझे हंसाई देता है. और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गाना है. और ये अगर आपको मालूम हो कि ये गाना ना रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन थी गुलजार जी और आरडी बर्मन के बीच में, पंचम दा के बीच में. देखो, वेरी क्लोज फ्रेंड्स और इकट्ठे घूमा करते थे. एक दिन रूफ टॉप पे ऐसे बैठे बात करते करते कुछ मोमेंट्स में उन्होंने ये गाना बना डाला, ये रिदम बना डाली. और कितना मिनिमम इसमें म्यूज़िक है. बट वो कहते हैं ना, कभी जो बोल होते हैं वही सारी की सारी आपकी लाइमलाइट ले जाते हैं. और किशोर कुमार ने फुल जस्टिस किया इस गाने पे, राइट. और इसको बहुत सारे अवार्ड्स फिल्म में मिले हैं. फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था किशोर कुमार को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का. आई एम टेलिंग यू अबाउट इट, द वैल्यू ऑफ पल, द वैल्यू ऑफ यू नो टाइम. व्हेन एवरीवन सेज, आजकल सब मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलते रहते हैं, भैया पल और यू नो टू बी यू नो लिविंग योर मोमेंट और बी इन प्रेजेंट. बट इन गानों में इतनी अच्छी तरीके से ये दर्शाया गया है और बताया गया है ना, कि आप सोचते हैं कि ये गाना सुन लेना तो आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है. एंड अ कॉमन फैक्टर अबाउट दिस गाना, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट गाना एंड ऑल्सो रितु का भी फेवरेट गाना है ये. तो जब भी वो ये गाना यहाँ प्ले करती थी ना, वो मुझे बुला लेती थी, शीना यू नो लेट्स हियर इट आउट टुगेदर. सो वी गोना प्ले दिस एंड आफ्टर दैट, उसका जो उसके बाद जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, इट्स सम हाउ रिलेटेड टू दैट. वो कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, बट वो फीलिंग्स है ना जो पल को लेके, लम्हों को लेके, वो वहीं की वहीं रहती है. सो लेट मी नो, लेट्स हियर दी सॉन्ग्स टुगेदर एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट.
2: ये है लाइका गोल्ड, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: What a beautiful track from the movie Lamhe. And that is what I was talking about. The Pal, the Lamhe. And this is sung by Hariharan. So kya chemistry dikhi dono gaano mein? Kya similarity dikhi do gaano mein? This is Laika. And yes, kuch aise gaane hote hain, sirf entertain nahi karte. They entertain you for a moment, but aise hote hain ki kuch na kuch sikha ke jaate. To live a lifetime in a single moment. और ऐसा ही वो गाना था आने वाला पल और ये लम्हे, isn't it? ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, इट इज़ दिस टाइम कि ऐसी चीज़ याद है कि एक साउंड ऑफ टाइम स्लिपिंग थ्रू आवर फिंगर्स, कि ऐसा लगता है कि बस उंगलियों से, हाथ से, आपके हाथ से जो कहते हैं ना, ऐसे फूंक मारी और वक्त निकल गया. वो कहते हैं द फ्यूचर इज़ जस्ट अ विस्टर वेटिंग टू लीव एंड द पास्ट इज़ ऑलरेडी गॉन. तो भाई अभी की जो सांसें हैं उनको लीजिए और उनको इंजॉय करिए, और ये गाने वैसे ही दर्शाते हैं. होप यू एंजॉइंग द म्यूजिक, होप दिस लॉट्स ऑफ फन. एंड यस, बहुत सारी और बातें भी करनी है. अच्छा, म्यूजिक भी प्लेंगे ना. आप लोग बताइए क्या चल रहा है ऑन अ संडे फन डे मॉर्निंग. बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सब उठ के आराम से बैठे हैं विद योर चाय की प्याली इन योर ओन घर वाली और अ कप ऑफ कॉफ़ी. यू नो आई ऑलवेज हैव दिस डिबेट एंड आई ऑलवेज लैंड अप हैविंग अ कॉफ़ी, जितनी मर्जी मैं कर लूँ मुझसे ना हो पाएगा. But thank you so much for sharing your pictures, what's happening around. And yes, we will be continuing playing good music. Aur ab chaliye chalte hain, agar aapko holiday pe jana hai to kya karna chahiye? Holiday breaks are brought to you by Southall Travel. और जैसा कि मैं कह रही थी, अगर आप हॉलीडे पे जाने की सोच रहे तो ट्रैवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग. साउथॉल ट्रैवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट, हाँ जी, सिर्फ £629 पर पर्सन फॉर 3 nights. Travel by 10th of December. Call the Southall Travel on 028-843-4444 or simply visit southalltravel.co.uk.
1: Breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels, or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This autumn, don't miss the new Kia Sportage Storm, a limited edition of the UK's favourite family SUV, with thoughtful details that add an extra touch of luxury to every drive. Order yours by the 15th of December to get 5.9% APR representative and up to £3,000 PCP deposit contribution. Don't wait. Book your test drive today. Search Kia Storm.
3: Kia. Movement that inspires.
2: T's and C's apply. Kia Finance. To verify, visit kia.com/uk/favorite.
4: Riti Sharma on Laika Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com. We'll be right back.

0: Co food containers are recyclable, reusable and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: We're finally going home for the wedding.
5: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
4: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
5: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
4: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
4: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
6: Save an extra 10% with code ROAMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Ya Wo only on Like a Gold.

0: हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और ये जो था हम किसी से कम नहीं, और डेफिनेटली हम तो डेफिनेटली किसी से कम नहीं, दैट इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड एवरीवन शुड हैव। और ये गाना गाया था किशोर कुमार और आशा ताई ने, और बहुत ही खूबसूरती से गाया था। मैं ये गाने को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी, तो बहुत सारे गानों का ना इसमें एक मिक्सचर सा है, बहुत सारी ट्यून्स इधर उधर से लेके ये गाना बना है। तो आई वॉज थिंकिंग कि आपको कोई ये गाना किसी और चीज़ की, किसी और गाने को याद दिलाता है तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड येस, वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और येस, अगले घंटे में होगी जोड़ी नंबर वन। तो ये जोड़ी नंबर वन जो है बहुत ही खूबसूरत सी जोड़ी थी, और इसके बारे में मैं इतना बता सकती हूँ कि जैसे कि कहते हैं ना, पुष्पा नो टीयर्स, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाली। कौन है, कौन सी जोड़ी है, यह आप लोग गेस करते रहिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Looking at currency update today, £1 is going to fetch you 127.44 Indian rupees, 86.02 Afghani, 366.94 Pakistani rupee, 163.05 Bangladeshi taka, 437.94 Sri Lankan rupee, 171.78 Kenyan shilling and 1.32 US dollars.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Golden Pounds is trading at £100.60 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
1: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Laika Gold. Non-stop classics. Laika Gold.

0: This was a back-to-back music. What a beautiful track from the movie Maine Pyar Kiya. Aate jaate haste gaate.
1: This is Laika.
0: And it's time for Jodi number one. पर आप लोगों ने तो पहले ही guess कर लिया है. तो मुझे तो ये लग रहा था मैं तो एक छोटा सा hint drop करूँगी और थोड़ा वक्त लूँगी. But आप लोगों ने तो oh my god बहुत बहुत smart हैं. पता नहीं कौन से बादाम काजू खाते हैं. भैया पुष्पा एट ईयर्स इतना सा मैंने बस बोला और लोगों के मैसेजेस मतलब खुशियों के मैसेजेस आने शुरू हो गए. जोड़ी नंबर वन टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इज आज बात एक ऐसी जोड़ी की करना चाहती हूँ जिनको आपने जिनके गेस्ट तो कर ही लिया है और बॉलीवुड की वो खूबसूरत दौर की याद दिलाएगी जहाँ पे खूबसूरती और सिंप्लिसिटी वॉज द ओनली थिंग. जब रोमांस स्क्रीन पर बहुत सिंपल था लेकिन उसमें भी ना एक अलग ही मस्ती और जादू सी थी. राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर नो गेसेस राइट. राजेश खन्ना जो कि हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार जिनकी एक मुस्कुराहट पर फैंस दीवाने हो जाते हैं और आज भी इतने मैसेजेस आ रहे हैं और भी मैं देख रही हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और इनमें से ये वुमेन है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है अभी भी हैं होता है. और शर्मिला टैगोर क्या एलिगेंस क्या खूबसूरती और अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग के लिए मशहूर और आज भी उतनी एलिगेंट लगती है. नहीं दोनों ने साथ में कई फिल्में की थी एंड आई एम गोना प्ले द सॉन्ग्स लेटर ऑन द शो. बहुत सारी बातें होंगी इनके बारे में पर आप बताइए आपका फेवरेट गाना कौन सा है ये जोड़ी के बारे में. मतलब सिंप्लिसिटी ही इज़ द बेस्ट वर्ड. एलिगेंस और रोमांस बड़ा ही नेचुरल सा दिखता था है ना. और आराधना अमर प्रेम सफ़र और दाग जैसी फिल्में की हैं इन्होंने और कुछ तो गाने इतने खूबसूरत हैं और मैं कोशिश करूँगी कुछ पल आप लोगों को उनके साथ उन्हीं की यादों में लेके चलूं. दिस इज शीना.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 126.95 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or by simply using SBI Yono mobile app and terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Este es un anuncio de radio de Hiscox Business Insurance que pretende mostrarle ciertos riesgos y peligros de los que Hiscox Business Insurance puede ayudarle a protegerse. If your business gets blamed by a client for a mistake, like accidentally recording the radio ad in the wrong language, Hiscox could help protect you. The story of your business, underwritten by Hiscox Business Insurance. Subject to already holding a relevant Hiscox policy and subject to policy eligibility terms and conditions.
3: Ye hai.
4: Like a gold.
3: Like a gold.
4: That's my orchestra of rubber ducks playing for me whilst I soak in a bubble bath. Yes, I have rubber ducks playing for me. I wish I could tell you that checking your tax and making any claims on the HMRC app felt like this. But I wouldn't go that far. Although, it is easier, and it will make you feel that little bit more on it.
5: For your money and tax, download the HMRC app and be on it today. You're on it. Sadco.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: This is Laika. कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, और हमारे जोड़ी नंबर वन ने ये बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में बताया था. और अमर प्रेम ये मूवी थी, और इसकी कहानी ना एक्चुअली में बहुत ही अलग सी थी, बिकॉज इसमें राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की रिलेशनशिप बहुत ही बॉलीवुड रोमांस नहीं था. इट वॉज वेयर शर्मिला टैगोर जी ने पुष्पा का रोल किया था, जबकि राजेश खन्ना ने आनंद बाबू. फिल्म थोड़ी सी इमोशनल थी और थोड़ी सी लोनलीनेस, कंपैशन और ह्यूमन कनेक्शन पे थी. बट ये गाना डेफिनेटली आज के दौर में भी मैं कहूँ ना तो बहुत ही अप्रोप्रिएट है. वी ऑल थिंक अबाउट कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, एंड आई ऑलवेज से लेट देम बी, हु केयर्स, राइट? और सेंट्रल थॉट यही है, लोग क्या कहेंगे. आज भी सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि आज भी क्या हम अपनी ज़िंदगी में लोग क्या कहेंगे को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं? आप लोग बताइए. और ये है एक्चुअल में, दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्ट ऑफ लाइफ. लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, अच्छा वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी. बट द आइकॉनिक थिंग अबाउट दिस अमर प्रेम वॉज पुष्पा, आई हेट टीयर्स. ऐसे राजेश खन्ना ने बोला था कि आज की डेट में भी, आई वुड से हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में आज भी ये कई जगह कोट किया जाता है. बहुत ही फेमस कैच फ्रेज है और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है प्लेड, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग. वो कह रहे हैं उन्होंने सीता मैया को नहीं छोड़ा था तो लोगों ने, तो आप लोग तो क्या हैं. सो प्लीज़ जितना सुनना है ना उतना सुनिए. भगवान ने दो कान किसके लिए दिए हैं, एक से सुनिए दूसरे से निकालिए, या फिर गांधी जी की तरह दोनों कान ही बंद कर लीजिए, सुनिए मत कुछ. दैट्स व्हाट आई हैव टू से. कमिंग अप नेक्स्ट इज अ गाना दैट्स गोना बेसिकली पुश यू अप व्हेरेवर यू आर. अगर बैठे हैं तो उठ जाइए, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ करना शुरू हो जाइए. वन ऑफ द आइकॉनिक गाना कमिंग अप नेक्स्ट.
0: ये है Laika Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: चलिया।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: And yes, this was the iconic movie Aradhana, जिसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया था. वैसे पहले सुपरस्टार थे, बट इस मूवी ने स्पेशली और ये गाने ने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना ने उनकी रोमांटिक स्टार इमेज को और मजबूत बना दिया था. एंड इसमें शर्मिला टैगोर का, एज आई रिमेंबर, डबल रोल भी था. तो लेट मी नो व्हाट इज द वन और टू ट्रैक्स आई एम गोना प्ले इन दोनों जोड़ी के, एंड लेट्स हियर इट आउट टुगेदर. और बताइए कि आप लोग जो हैं क्या सोचते हैं राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बारे में, कि डेफिनेटली उनकी जो मूवीज काफ़ी आइकॉनिक थी, बट देयर इज लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जस्ट जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, और मैं कुछ क्या पता एक दो बता ही दूं.
3: द रितु शर्मा शो विद रितु शर्मा.
4: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: भरी।
1: राजेश कनन शर्मिला टैगोर वाटर जोड़ी, और ये गाना था मूवी सफ़र का। और सफ़र एक ऐसी मूवी थी जो एक टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि राजेश खन्ना ने बेसिकली 17 बॉक्स ऑफिस हिट्स दिए थे बिटवीन 1969 to 71, और ये मूवी भी उसमें एक मूवी। तो इमेजिन 17 कंजेकटिव बॉक्स ऑफिस हिट, बाई गॉड क्या करें हम तो, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा काम नहीं कर पाते, बैक टू बैक ओ एम जी। एंड येस ऑफ कोर्स वी गोना टॉक अबाउट वन मोर सॉन्ग एंड देन ऑफ कोर्स बहुत ही प्यारी सी जोड़ी, और सब लोग कह रहे हैं कि ये जोड़ी आइकॉनिक जोड़ी थी और एवरग्रीन जोड़ी थी, और बेसिकली ऐसी ही जोड़ियों को हम डेफिनेटली लेके आएंगे आपके पास। दिस इज शीना,
2: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: और अब बात करते हैं हमारे लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 36, एंड इट्स ऑल अबाउट इनसाइट्स इनटू फॉस्टर केयर, और ये होस्ट किया है हमारी फेवरेट रूबी रजा ने, फ्रॉम फॉस्टरिंग वर्सेस अडॉप्शन एंड द अप्रूवल प्रोसेस टू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड द सपोर्ट अवेलेबल टू केयरर्स, जो कि आसान काम नहीं है। ये जो एपिसोड इट गेट्स इनटू द क्वेश्चंस पीपल ऑफ्टन हैव बट डोंट नो हु टू आस्क, सो डेफिनेटली आप ज़रूर सुनिए और ज़रूर देखिए हियर डायरेक्टली फ्रॉम फॉस्टर केयर प्रोफेशनल्स एंड फॉस्टर केयरर अबाउट वॉट इज really takes to open up your home, support a child and become part of a wider community. Laika Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Laika Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: If your business is accused of damaging a client's property, for example, accidentally pouring tea all over their expensive audio equipment, really, really sorry about that, by the way. Then Hiscox could help protect you. The story of your business, underwritten by Hiscox Business Insurance, subject to already holding a relevant Hiscox policy and subject to policy eligibility, terms and conditions.
4: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
5: TravelHubWorld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र।
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November.
12: टू बुक कॉल 0208-514-54 Book online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner Laika Radio Network.
14: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
15: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
14: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहत गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हेरो लेजर सेंटर में।
15: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
14: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756947।
15: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208-907-0116।
14: दिवाली का जश्न अपनों के संग।
16: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
17: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर, द विलोज फॉरेस्ट रोड, इलफर्ड, IG6 3SL।
16: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
17: बुक नाउ वाया इंटरनेट, इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
16: कॉल प्रथम पटेल 0783830-2450।
0: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
11: Same. But how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
0: Not with SimZy. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
0: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
11: SimZy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
18: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
19: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
20: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
21: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, namkeen, papad, pickles, chikki, pot meals and much more.
20: Jaimin Foods Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ruby Raza discusses foster care among South Asians.
22: If I was speaking to foster carers, I would say that you don't need to be perfect. You need to be present. You need to have the empathy to start and do the caring of foster carers are regarded as professionals. If you think you can, you can.
23: Yeah, true.
22: Just try it.
23: There's a will, there's a way.
2: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

0: is Laika.
1: गजर ने किया इशारा कि अब दोपहर का टाइम हो गया है एंड इट्स अ संडे की दोपहर और आई वुड से दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग मी पिक्चर्स खाने की. क्या बोलूँ मैं, मतलब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू ईट एनीथिंग इन स्टूडियो. और आप लोग और वो फोटोज भी जो लोग भेज रहे हैं ना वो AI जनरेटेड भेज रहे हैं आजकल, तो मतलब लाइफ ही AI जनरेटेड हो गई है. प्यार भी मुझे लगता है AI जनरेटेड ही हो जाएगा कुछ टाइम तक. जो फीलिंग्स आजकल सारे लोग ChatGPT और यहाँ वहाँ से पूछ के, यू नो, सारे प्लेटफॉर्म से पूछ के ही मैसेजेस लिखते हैं, अपना दिमाग और दिल का इस्तेमाल करना लोग भूल से ही गए हैं. जैसे विल यू अग्री विद दिस ओर नॉट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली यूजिंग यू नो ऑल दीज प्लेटफॉर्म अपने दिल के एक्सप्रेस करने के लिए. यू नो, पोएम लिखनी है, कोई पोइट्री करनी, कोई शेर व शायरी करनी है या कोई मैसेज लिखना है, बस स्पीकर ऑन किया, बोला मेरी ये भावनाएँ हैं और क्या सुंदर वे में आपको जो AI एक जवाब दे देता है तो सामने वाला वैसे ही इम्प्रेस हो जाता है. और जो आपको एक्चुअल में दिल से जानते हैं ना उसे पता होता है आप कितने पानी में. नहीं और ऐसी कुछ पिक्चर्स मुझे खाने की भेज रहे हैं लोग, तो मुझे पता चल गया है आपके हाथ से बना खाना नहीं है, AI जनरेटेड प्यार मोहब्बत वाला खाना है, बट प्यार से भेजा है तो चलिए AI का खाना ही सही. और ये सब लोग पता है जिन्होंने मुझे ऐसी फ़ोटोज़ भेजी हैं, तो मैं किन के लिए ये पॉइंट आउट कर रही हूँ. पर ये संडे की दोपहर जो होती है बहुत ही खूबसूरत सी होती है. यू नो, समटाइम्स वी नीड टू टेक अ पॉज, जो कि हम लेते नहीं हैं, बहुत सारा काम होता है, बट अ लेजी संडे आफ्टरनून इज़ अ रिमाइंडर दैट यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी प्रोडक्टिव. हमेशा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश ना ही करिए तो बेटर है. सुकून की एक और दोपहर मुबारक हो और इन्जॉय करिए. अगर नहीं करिए अभी तो, अभी तो शुरू हुई है. आज खुद को वक्त देने का दिन है तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकाल लीजिए. और यस,
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: £1 in British sterling can get you up to 126.95 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or by using SBI Yono mobile app. Terms and conditions do apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Take this, please. Go. Go on without me.
3: Come on, Dave. Get up.
2: No, Carl. We have to pay our weekly cash takings in before it's too late. And I'll never make it.
3: We can do that at the post office, Dave. It's over the road.
2: Oh, right. I didn't know that.
3: Yeah. They have all major UK banks for cash deposits straight into your bank account. And many are open late and on weekends.
2: Shall we stop for a cuppa then?
3: Yeah.
4: Whoever you bank with, post office has your bank.
5: Like our gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Sunshine, skyscrapers and souks
9: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
8: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
9: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
8: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
9: Southall Travel. At all protected.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
11: લંડન હાલો ગરબે ગુમવા શ્રી 27 ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ સાથે માણો નવરાત્રી ભારતના લાઇવ બેન્ડ સાથે 10-20 ઓક્ટોબર સાંજે 7:30 થી એટ 27 પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી એડલ્ટ ટિકિટ્સ £10 16-17 અને 18 ઓક્ટોબરે £15 5-10 વર્ષના બાળકોને £5 અંડર 5 ફ્રી 11 રાતનો સીઝન પાસ £100 રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક 27 ગામ પાટીદાર સમાજના ગરબા એટલે Best and best.

0: A beautiful track and a beautiful artist, कैफी आज़मी. और ये खूबसूरत सी एमलगमेशन थी जो कि जगजीत सिंह के साथ थी, और ये मूवी थी अर्थ. इसके सभी गाने इतने खूबसूरत हैं कि जो भी गाना प्ले करें वो कमी लगता है. बट कैफी आज़मी जी, यू नो, एक लेजेंड गज़ल सिंगर जगजीत सिंह के साथ उन्होंने इस मूवी में तो डेफिनेटली एक ऐसा मैजिक क्रिएट किया था विच वॉज़ क्लासिक क्लासिक. और इतनी क्लासिकल ट्यून्स इसमें आई थी, और डीपली आई वुड से डीपली ऐसी जो थी कन्वेंशनल सॉन्ग्स थे कि वो आपके दिल को छूने वाले थे. सो ये थे हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, और कल होंगे एक नए.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.
0: यस सर, थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें, थोड़ा सा मूड चेंज करें, फ्रॉम गजलें से लेकर थोड़ा सा डिस्को डांस पे चले. दिस इज फ्रॉम डिस्को डांसर, द डेरी वैली स्पॉन्सर्ड गाना. काफी इंटरेस्टिंग गाना है. लेट्स, जिन्होंने नहीं वर्कआउट किया दे कैन डू इट राइट ऑन दिस सॉन्ग. आई सी लॉट ऑफ वुमेन आउट देयर कुकिंग विद देयर कर्ड चीज, सो कीप योर कर्ड चीज ऑन वन साइड और थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए. व्हाई नॉट, इजंट इट? पार्वती खान की आवाज में जिमी जिमी. आप तो मुझे बस इतना बोलिए, शीना शीना आ जा, हमने तेरे लिए खाना बना के रखा है. How many of you are saying that?

0: feel good track brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Ritu Sharma.
2: और हाँ जी, आप जितने भी 90s के फैन हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है. 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट द ओवल अरेना वेम्बली ऑन संडे 20th ऑफ दिसंबर. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS. एक्सक्लूसिव रेडियो भारत वन एंड ओनली लाइका रेडियो नेटवर्क. सो व्हाई मिस द चांस.
0: रिचि शर्मा ऑन लाइका गोल्ड. फॉरगॉटन मेमोरीज रिफ्रेश्ड. लाइका गोल्ड.

0: फ्रॉम द मूवी सागर, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है। सिंपली ट्रू लव इज ओनली वन दैट गिव्स यू लव इन रिटर्न, एवरीथिंग एल्स इज मीनिंगलेस, इजंट इट। बहुत ही खूबसूरत सा ऑन स्क्रीन पिक्चराइजेशन इस गाने की कमल हसन पे, बहुत ही इमोशनली गाना गा रहे हैं इन फ्रंट ऑफ यू नो ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया, काफ़ी इमोशनल गाना था। बट इसके लिए कमल हसन को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया था इस मूवी के लिए, एंड इन फैक्ट जो फिल्म फेयर भी था उन्होंने उसको, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि दो चीज़ों के लिए नॉमिनेट कर दिया था, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सो दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसमें डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर काफ़ी साल के बाद आए थे आफ्टर बॉबी, सो काफ़ी ब्यूटीफुल सी मूवी थी। और एक एक गाना इसका इतना अच्छा है ना कि जितनी बार भी सुनो हमेशा मन करता है यार इतनी जल्दी ख़त्म की हो गया, really want to you know listen more, but यही प्रॉब्लम है कि ये गाने जितने आप सुनते जाइए ना आपका मन करता है और सुनो और सुनो, बट कई बार क्या होता है आजकल के गाने कुछ ऐसे जो एक बार सुन के लगता है नहीं बस यार हो गया, अभी नहीं कुछ हो पाएगा, तभी तो इनको क्लासिक कहते हैं, तभी ये क्लासिक हिट्स हैं, isn't it?
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: हाँ जी, सारे हॉलीडे लेने वाली हूँ जी, ट्रैवल टू दुबई विदाउट अ हैवी प्राइस टैग, साउथ ऑल ट्रैवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स, ट्रैवल बाय 10th ऑफ दिसंबर, कॉल साउथ ऑल ट्रैवल 0208-843-4444, विजिट southalltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Take this, please. Go. Go on without me.
3: Come on, Dave, get up.
2: No, Carl. We have to pay our weekly cash takings in before it's too late, and I'll never make it.
3: We can do that at the post office, Dave. It's over the road.
2: Oh, right. I didn't know that.
3: Yeah, they have all major UK banks for cash deposits straight into your bank account, and many are open late and on weekends.
2: Shall we stop for a cuppa then?
3: Yeah.
4: Whoever you bank with, post office has your bank.
5: Yeah. Like a gold travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
6: travelhub, best service with unbeatable price
5: at all protected.
6: visit travelhubworld.com.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: तेरा क्या होगा रे कालिया?
9: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
8: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
10: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
11: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 0208574-4934। डिलीवरी भी अवेलेबल।

0: करूं तो।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स।
2: दिस वॉज अ कोका नूडल टेसी ट्रैक, बहुत ही खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी 1942 अ लव स्टोरी। और ये बहुत ही खूबसूरत सी मूवी थी और इसमें अनिल कपूर ने बहुत ही अच्छा रोल किया था। बट क्या आप लोगों को मालूम है कि अनिल कपूर ने ये मूवी सबसे पहले रिजेक्ट ही कर दी थी कि मुझे नहीं करनी है, कि मैं मे बी यू नो आई एम टू ओल्ड इन फ्रंट ऑफ लाइक यू नो द स्टार कास्ट। बट अगेन यही हुआ इनमें कि वो जिन्होंने जितना उन्होंने नाना की उतना ही उनको इंसिस्ट किया गया, और उसके बाद यू नो विधु विनोद चोपड़ा ने, और उन्होंने उनको इसी मूवी में लिया। तो और उसके बाद तो वी ऑल नो यू नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट मूवी। और उनका रोल डेफिनेटली मुझे तो बहुत पसंद आया था, बहुत ही काम कंपोज्ड वो एक्टर हैं, जहाँ भी कुछ भी करते हैं ना अपने बेसिकली एक छाप छोड़ के डेफिनेटली जाते ही जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ कुछ मूवीज़ थी जिनमें एक लव स्टोरी भी थी और एक यू नो बहुत ही खूबसूरत सा म्यूज़िक भी होता था, तो मतलब सब कुछ एक ही मूवी में डाल देते तो आपको वो मूवी बार बार बार बार देखने का मन करता था। एंड दिस ब्रिलियंट सॉन्ग वाज संग बाय नन अदर देन कुमार सानू।
3: ये है Like a gold.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: Looking at the currency update today, £1 is going to fetch you 127.37 Indian rupee, 366.76 Pakistani rupee, 162.87 Bangladeshi taka, 437.73 Sri Lankan rupee, 1.32 US dollars and 63.36 Mauritian rupee.
3: Leica Radio.
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica
4: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Golden Pounds is trading at £100.60 per gram.
4: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
5: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.
2: और हाँ जी, आप जो है बहुत ही आराम करिए, क्योंकि ये संडे की दोपहर है, जैसा कि मैंने कहा था, और संडे की शाम के लिए की इवनिंग मूड भी ले आइए। बट अभी आफ्टर 1 o'clock ऑन द एयर वेव्स, इट विल बी अनुराग विद हिज राग, विद हिज बातें, विद हिज विचार, राइट? टेक इट ईजी, एज आई सेड, यू नीड टू टेक अ पॉज समटाइम्स। ये नहीं कि संडे है, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, बिकॉज मंडे ब्लूज हम सबको होते हैं, राइट? बट मंडे को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए, एक स्वीट स्टार्ट देने के लिए थोड़ा सा पॉज करना भी जरूरी है। एंड दैट इज वॉट आई लर्न इन माई लाइफ, पॉज वर्ड, यू नीड टू टेक अ पॉज इन लाइफ। और आप ज़रूर पॉज लीजिएगा, बट हाँ अपना इंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा सा मौसम है, फिर ठंड होने ही वाली है, तो जब तक है ये धूप, उस धूप को इन्जॉय करिए, अपना जो है ख्याल रखिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ख्याल, हेल्थ कम्स फर्स्ट, इज़न्ट इट? और मेरा वक्त तो जा आ रहा है शो पर से जाने का, एंड आई एम गोना लीव यू विद दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी हीरो, और हीरोइन तो सिर्फ मैं ही हूँ, है ना? दिस इज शीना, होप यू इन्जॉयड माई कंपनी एज आई इन्जॉयड अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है, और यू नो जितना मिलता है वो हम कहते हैं बटोल लें, क्योंकि फिर पता नहीं कब मिले, तो जब तक मिल रहा है आई एम रियली इन्जॉइंग इट। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एज वेल, एंड इन द एंड थैंक यू सो मच फॉर द फूड दैट यू सेंड टू मी, AI वाला। और उन्होंने और लोगों ने चढ़ाने के लिए और फोटो भेज दी हैं कि देखिए आप ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। नेवर माइंड, मे बी सम डे शायद आप लाइव मेरे लिए स्टूडियो में लेकर आए, बट जस्ट वॉन्ट टू से हैव अ हैप्पी हैप्पी एंड अ ग्रेट संडे, इन्जॉय योर वीक, कमिंग वीक, एंड बी पॉजिटिव, एंड आई विल सी यू जल्दी ही। कब, कहाँ, कैसे, ये तो वक्त ही बताएगा, तो उस वक्त पे ही छोड़ देते हैं हम मेरा ही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, मिलेंगे जरूर बहुत जल्दी। दिस इज शीना सेइंग बाय बाय।
5: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM.
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. an unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
0: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiyan.
4: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
8: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
7: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
8: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में यूके में पहली बार
7: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन
8: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
7: शाम 7 बजे डोर्स ओपन
8: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02082660678
5: Passports, tickets, kids' tablets.
9: All packed. But what about our phones? We'll need them for maps, WhatsApp, photos.
5: And checking in with grandma.
9: Exactly. Roaming abroad can get expensive.
5: That's why I got Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
9: So we can keep our numbers for WhatsApp and bank OTPs?
5: Yep. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
9: Holiday sorted.
4: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: The Buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11.
5: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
11: Danube 11, 11.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
13: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
14: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
13: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
4: अप नेक्स्ट गोल्डन रॉक विद अनरॉक ऑन लाइक अ गोल्ड Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
1: Hello and good afternoon. इस वक्त का तापमान है ग्रेटर लंदन का 19 डिग्री सेल्सियस, जो कि अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. सनी एंड लाइट विंड. सनसेट हो रहा है आज 6:32 PM, 6:32 PM सनसेट.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
1: स्वागत है आप सभी का शुरू से सजी सुपर संडे वाली इस महफिल में. मैं हूं आपके साथ अनुराग. बैक टू बैक गानों के साथ कर रहे हैं इस घंटे की शुरुआत. बांध लीजिए अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां और इंतजार कीजिए दिमाग और दिल की बत्ती जलाने का, क्योंकि थोड़ी देर बाद आने वाला है गोल्डन वर्ड और गोल्डन राग.
0: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
0: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में फासले फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत फासले बल्कि कम कर देता है। शिव हरी साहब का इस फिल्म में संगीत, और इस फिल्म की खास बात ये है 1985 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था और इस फिल्म में एक नहीं बल्कि दो न्यू कमर्स की एंट्री हुई थी, यानी कि नए चेहरों की एंट्री हुई थी। इस फिल्म में दो बड़े सितारे स्टार किड्स जिन्हें कहा जा सकता है यकीनन बॉलीवुड में कदम रखा था दो स्टार किड्स ने। कौन थे ये? मशहूर सिंगर महेंद्र कपूर साहब के बेटे रोहन कपूर साहब थे जो इस फिल्म के हीरो थे, और शबाना आजमी की भांजी व और तब्बू की बड़ी बहन फरहा नाज ने भी इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई क्योंकि एडिटिंग इसका सबसे बड़ा कारण माना गया था, ढीली स्क्रिप्ट, हालांकि सब्जेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग चुना गया था। लेकिन फिर भी गानों ने यशराज फिल्म की, हमेशा यही रीत है कि यशराज फिल्म के गाने हमेशा अपना कमाल करते हैं, और वही कमाल आज भी लता जी और किशोर दा की आवाज़ में इस फिल्म के तमाम गाने बड़े ही खूबसूरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के संदेशों का, मैसेजेस का, इसके लिए बहुत हमेशा नज़र रहती है कि अरे भाई सब लोग जग रहे हैं कि नहीं, सब लोग फुर्सत में हैं कि नहीं, सब हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं, और ये तुरंत पता चल जाता है जैसे ही आपके संदेश आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीना जी का, गुंजन जी का जो इससे पहले थी हॉट सीट पर। और आप सुन रहे हैं सुपर संडे वाली पाठशाला। अगला गीत किशोर दा की आवाज़ में ख्वाबों में ले जाने वाला ये खूबसूरत सा गीत है। याद रखिए दिल की बत्ती और दिमाग की बत्ती जलाने का भी वक्त आएगा, तो जुड़े रहिए, एक भी कतरा मिस मत कीजिए। यह है महफिल सिर्फ आपकी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126 रुपीज़ 50 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Honey, I was in the pet aisle and you'll never guess what.
3: What is that?
2: A gerbil. They were on sale.
3: Why would we want that?
2: They were doing 3 for 2.
4: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: Sunshine, skyscrapers and souks.
6: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
5: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
6: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
5: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
6: Southall Travel. At all protected.
7: નવરાત્રિ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન સાથે ગરબે ઘૂમવા તૈયાર થઈ જાઓ.
8: 10 થી 19 ઓક્ટોબર દરરોજ સાંજે 7 થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ગરબા અને દાંડિયાની રમઝટ ભારત થી પધારેલા કલાકારો સાથે.
7: ટિકિટ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી £5, ફ્રાઈડે ટુ સન્ડે £7. વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ, ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે, સાઉથ રાઇસલિપ, HA40JS.
8: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0777-287-509.
7: એ હાલો ગરબે.
9: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
10: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949 250376.
11: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
12: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9-18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
11: रात 8 बजे से टिल लेट। डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल।
12: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंट ब्राइट और फैक्सोमा।
11: कॉल प्रथम पटेल 07838302450।
13: मेरे मन की
14: कैच राज कपूर्स एवरग्रीन क्लासिक संगम रिस्टोर्ड इन 4K एज पार्ट ऑफ द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल दिस संडे द 4th ऑफ अक्टूबर फ्रॉम 2 PM एट योर नियरेस्ट शोकेस सिनेमा। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। लॉग ऑन टू showcasecinemas.co.uk/saff/uk।
15: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
16: विंटर्स कमिंग एंड मेरा बॉयलर pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
17: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
18: Minar Jewelers. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या valuation करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए Minar Jewelers पर 181 Upper Tooting Road या विजिट कीजिए minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
19: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
20: Like a Gold, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो lykagold.com पे।
21: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Happy Halwai wala ye meetha meetha song humne aapko sunaya Kishore Da ki awaaz mein. Film ka naam Teen Deviyan, badi kamaal ki film hai. Do baar main dekh chuka hoon. Main to kahunga jab bhi fursat ho aapko ye film zarur dekhen. Agla geet Rafi sahab aur Suman Kalyanpur ji ki rare awaazon mein. बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है जब भी इन दोनों ने साथ में गाया. फिल्म का नाम यार मेरा. सुनते रहें सुपर संडे वाली ये महफिल.
0: लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाजों में यार मेरा गीत सुनने के बाद अब अगला गीत किशोर दा और आशा ताई की आवाज में है। ये भी बड़ा ही कमाल का गीत है। जिस तरह का इसका फिल्म का टाइटल है घुंघरू की आवाज, जितना पीसफुल होती है वो आवाज, कई बार उसे आप सुने तो बड़ा मन को शांति मिलती है अगर वो कत्थक हो रहा हो खासतौर पर। लेकिन ये गीत भी वैसा ही है, बिल्कुल घुंघरू की आवाज की तरह आपके दिल को छूता हुआ। सुनते रहे like
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10

0: मेरी जहाँ मेरा सब तेरा, घुंघरू की आवाज फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत किशोर दा और आशा ताई की आवाज में। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और इसके बाद जमेगी, क्या जमेगी? कव्वाली वाली महफिल। तो कव्वाली के लिए हो जाइए तैयार, मसनद वसनद आस पास रख लीजिए, बैठ जाइए पलथी मार कर, फिर होती है ये बैठक छोटे से अंतराल के बाद।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: And now, the weather.
3: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south. But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusion supply. Find out more at ikea.co.uk.
4: Ye hai.
5: Like a gold
6: travelhubworld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call travelhub 24/7 on 0208 782 8833 or visit travelhubworld.com.
7: travelhub, best service with unbeatable price
8: at all protected.
7: visit travelhubworld.com.
9: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
10: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में
9: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
10: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
9: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन।
10: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
9: शाम 7 बजे। डोर्स ओपन।
10: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 0208 426 0678।
11: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
12: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
13: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
12: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
13: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 0192322727274। बुक योर टेबल टुडे।
9: इस दिवाली शॉपिंग भी, मस्ती भी और फिल्मी सितारों से मुलाकात भी।
14: पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल।
9: सुपरहिट गुजराती फिल्म लालो के आर्टिस्ट श्रुहद गोस्वामी और रीवा राज से मिलिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैरो लेजर सेंटर में।
14: वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, शॉपिंग और स्टेज एंटरटेनमेंट, पूरी फैमिली के लिए फुल ऑन धमाल।
9: स्टॉल बुक करने के लिए दीपा को कॉल करें 0794756147।
14: टिकट्स के लिए कॉल करें वीडियोरामा 0208907016।
9: दिवाली का जश्न अपनों के

0: किशोर दा की आवाज में कव्वाली वाला ये अंदाज वादा दुश्मन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। और जैसे कि हमने वादा किया था कि आपको बताएंगे कि कब आपको जलानी अपने दिमाग की बत्ती, आप बताएं। और हम सुनने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड आने वाला है, जो कि आएगा अगले गीत के बाद। हमारे साथ आप भी गुनगुनाते रहिए, क्योंकि गाना है गुनगुनाने वाले मिजाज का।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के थ्रू इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 1 पाउंड के बदले 127.42, अफगानी 85.92, पाकिस्तानी रुपीस 366.79, बांग्लादेशी टका 162.9, श्रीलंकन रुपीस 433.77 एंड 1 US डॉलर 1.32.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.60 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa or by using our Leica Radio

0: फिल्म फेयर अवार्ड विजेता ये फिल्म है भाई। आप सुन रहे थे आराधना का ये खूबसूरत सा गीत रफी साहब और आशा ताई की नज़रों में। ये फिल्म काका के लिए भी बड़ी मायने रखती है। जैसे कहते हैं कि रातों रात किस्मत का बदल जाना, इस फिल्म ने काका की ज़िंदगी में वही कारनामा करके दिखाया था। बड़ा ही कमाल का संगीत एस डी बर्मन साहब का इस फिल्म के लिए संगीत, और एक झलक पाने के लिए काका की इस फिल्म के बाद लोग दीवाने हो गए थे उनके, और एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इनके घर के बाहर इंतज़ार करा करते थे। और ये उतना वो दौर तो नहीं, लेकिन काका के फैंस जो उनके पुराने फैंस थे उन्हें मैंने भी बहुत करीब से देखा है आते हुए उनके बंगलों के बाहर। फिलहाल आप बता रहे हम सुनने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है बहुत ही कॉमन सा, बड़ा ही आसान सा, बड़े अच्छे अच्छे गीत आ जाएंगे आपके दिमाग पर। कोशिश करिए जल्दी से भेजें, जल्दी से हम अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें, शुमार करें आपके उन गीतों को। आज का गोल्डन वर्ड है देखा, देखा, देखो, देखेंगे, सब कुछ चलेगा भाई। आपकी महफिल है सुपर संडे वाली, सुनते रहें और अपने फरमाइश के पिटारे से देखा वाले गाने हम तक पहुंचाएं।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place.
3: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
5: No, sorry, mate.
6: No, we don't have that part.
7: Have you tried down the road?
8: We can get it in, but it won't be for a few days.
9: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
10: London, taiyar ho jao. Aa raha hai Sega Navratri 2026.
11: 9 se 10 October, pre-Navratri.
10: Aur 11 se 19 October, Navratri ka jashn.
11: Kajal Pandya aur Avinash Barot ke saath live music par jhoomo, garba khelo.
10: 17 October, Kids Garba. Aur 24 October, Sharad Poonam Garba bhi.
11: Milte hai Asian Community Centre, White Hart Road, London, SE18 1DG.
10: Tickets book करो segalondon.co.uk।
11: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा।

0: 08 574 8410.
1: Like a gold.
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गोल्डन राग संग सूरज सजी सुपर संडे वाली इस महफिल में। मैं हूं आपके साथ अनुराग। यहां पर मिलेगा आपको सुरों का डबल डोज। और आज आप बताएं हम सुनाने वाली थीम के लिए दिमाग की बत्ती जला ली। आज का गोल्डन वर्ड है देखा।
3: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
4: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
5: TravelHub.
4: At all protected.
3: Leica. On Rug with Golden Rug.

0: देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, लता जी और किशोरदा की आवाज में सिलसिला फिल्म का ये खूबसूरत संगीत। इसके चाहने वालों का सिलसिला अभी तक बरकरार है भाई, क्योंकि ये गाना ही बहुत खूबसूरत है। इस गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी आज की थीम को ध्यान में रखते हुए उल्लास जी, अमित पटेल साहब, हंसुमती जी, सोमिला मुंगुर और नरेंद्र पांचाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पहला गीत दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ फिल्म का ये गीत लता जी और किशोर कुमार सानुदा की आवाज़ में ये गीत हम तक पहुँचाया था मीना शाह जी, प्रीतम जी और राजेश जी ने। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं सुपर संडे वाली पाठशाला। जी हाँ, अगला गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, कमाल का ये गीत है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और आपको सुनाते हैं। दिमाग की बत्ती बहुत अच्छी तरह से जली, बहुत ही खूबसूरत गाने आए। मुझे खुद मुश्किल हो रही कि किन किन गानों को सेलेक्ट करूं, किसका दिल तोड़ूं, किसका दिल ना तोड़ूं। आज आपका नंबर है, कल किसी और का होगा। इसी बात को बस ध्यान में रख के सब्र कर लीजिए। यही कह सकता हूँ, सब्र का फल सुरीला होता है। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिला है 126 रुपीज़ 50 पैसे। आप अपने पैसे को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Honey, I was in the pet aisle and you'll never guess what.
3: What is that?
2: A gerbil. They were on sale.
3: Why would we want that?
2: They were doing 3 for 2.
4: Get the things you actually want for less. New lower prices are here to stay across storage, sofas, mattresses and more. Available online and at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
5: This is Leica Gold.
6: Sunshine, skyscrapers and souks.
7: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
6: Flying direct with Emirates so you can enjoy 3 nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
6: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel. At all protected.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
10: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
9: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
10: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
9: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: तेरा क्या होगा रे कालिया?
12: सरदार, मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
11: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
13: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
14: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 0208574-4934। डिलीवरी भी अवेलेबल।

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Dil deke dekho, vintage gold wala ye pyara sa geet aap 7 se 10 sun sakte hain every weekend. Rafi sahab ki awaaz mein bada hi khoobsurat sa ye geet tha aur ye geet hum tak pahunchaya hai Manohar Manu sahab, Arjun ji और विजय गोदोरे साहब ने. बहुत बहुत शुक्रिया. आप तीनों का ही, तीनों के तीनों लेजेंड है भाई. अगला गीत थोड़ा सा मध्यम मध्यम आपके दिल को देगा दस्तक, लेकिन कमाल की है ये आवाज, क्योंकि इस आवाज ने जीता है पूरे जग को.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: जग को जीतने वाली जगजीत साहब की आवाज साथ साथ फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना, किनकी वजह से? करसन पिंडोरिया साहब और लीना फ्रॉम डबलिन की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ही अगला गीत किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आया, थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन रॉक अनुराग के साथ।
3: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
1: साउथ ऑल ट्रैवल अफोर्डेबल दुबई ऑफर आपके लिए लेकर आए एक्सक्लूसिव डील सिलेक्टेड पार्टनर्स के साथ, होटल, डायरेक्ट फ्लाइट्स और एमिरेट्स एयरलाइंस। जस्ट £629 में पर पर्सन फॉर थ्री नाइट्स ट्रेवल बाई 10th December। कॉल कीजिए साउथ हॉल ट्रेवल को, नंबर है 02088434444 और विजिट southholtravel.co.uk।
3: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southholtravel.co.uk. On Rug with Golden Rug.

0: किशोरदा की आवाज में झंग झिंगाट वाला ये गीत है भाई। दीपक भट्ट साहब और काजल जी ने इस गीत को हम तक पहुंचा है। फिल्म का नाम बॉम्बे टू गोवा। बड़ा मजा आता है इस सफर को, क्योंकि मैंने कई बार ये सफर तय किया है बाय फ्लाइट, बाय रोड, कार से भी, और एक बार तो बाइक से भी। बड़ा मजा आया था। अगला गीत किसकी फरमाइश के पिटारे से निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन।
1: ये है लाइका गोल्ड, लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: हमारा बेहद ही पॉपुलर लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इस बार है एपिसोड नंबर 36, टाइटल इनसाइट्स इनटू फॉस्टर केयर, होस्टेड बाय रूबी रजा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में हम दे रहे हैं लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: And now, the weather.
3: Outside, gloomy skies, a persistent drizzle, and a chilly wind blowing from the west, north, east, and south.
4: But inside, temperatures of toasty warm with a high chance of plush rugs, soft lighting, and snuggly throws. Come home to cozy. Enjoy 20% off selected textiles, lighting, and more. In-store only at your local IKEA. IKEA, the wonderful everyday. T's and C's and exclusions apply. Find out more at ikea.co.uk.
1: ये है Laika Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: क्या खूबसूरत गाने के बोल हैं किशोर दा की आवाज में। मजबूर फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हम तक पहुंचाया है अमिता जी, संजीव जी और रानी जी ने। और अगला गीत आ रहा है फिल्म छोटी सी मुलाकात फिल्म से, और ये गीत हम तक पहुंचाया है फरीदा गुलाम अली जी, शादाब साहब और अनिल साहब की तरफ से। अगला घंटा दिल की बत्ती जलाने का, उम्मीद है ये घंटा आपको पसंद आया होगा। अगले घंटे होगी आपसे मुलाकात, फिलहाल अगला गीत आप करें एंजॉय और सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
3: Hey, mere, hum safar.
2: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: Yes, we're in the final. I know. I still can't believe it. We're actually going.
5: Flights booked, tickets sorted. But hang on, how are we going to use our phones over there? We'll need them for tickets, maps, photos, and obviously sending the celebrations home.
6: Simsy, data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available. And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs.
5: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in 3 minutes.
6: Come on, let's go win this.
7: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simsy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simsy.com. Terms apply.
8: आ नवरात्री माँ कृपा फाउंडेशन साथे गरबे घूमवा तैयार थई जाओ।
9: 10-19 ઓક્ટોબર दररोज सांजे 7 થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ગરબા અને દાંડિયાની રમઝટ ભારત થી પધારેલા કલાકારો સાથે।
8: ટિકિટ્સ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી £5, ફ્રાઈડે ટુ સન્ડે £7, વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ ફર્સ્ટ ફ્લોર યુનિટ 2, 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે સાઉથ રાઇસલિપ HA40JS।
9: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509।
8: એ હાલો गरबे रंबा
10: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
1: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlus and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
11: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
14: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207-132-1458 or sales@leicamedia.co.uk.
15: Rug with Golden Rug.
16: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: लता जी की यादों के साथ उनके चाहने वालों की लिस्ट में ये गाना भी शुमार जरूर होता होगा। रजिया सुल्तान फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। खयाम साहब और हमारे इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक कैफी आजमी साहब ने इस गाने के लिखे हैं बोल। कमाल का इस फिल्म का संगीत, सूदिंग और दिल को पसंद आने वाला। हालांकि इस फिल्म के साथ काफ़ी विवाद जुड़े रहे। धर्म बाजी ने इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था एक हप्सी का, लेकिन बाद पहले इससे पहले धर्म बाजी से पहले इस फिल्म में बच्चन साहब को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन बाद में ये रोल गया धर्म बाजी के पास। उस दौर की जिस दौर में 1983 में फिल्म आई थी, उस दौर में बड़ी से बड़ी फिल्में 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक बन जाती थी। शान जैसी बड़े बजट की फिल्म को भी इस फिल्म ने पीछे छोड़ दिया था। 7 से 10 करोड़ की लागत में फिल्म बनी थी उस दौर में, और सबसे बड़ी लागत के बाद भी ये सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। लेकिन आज भी इस फिल्म के गाने बड़े ही दिल को मोह लेने वाले। चलिए वक्त आ गया है दिल की बत्ती को ये जलाने का, आपको बताने का आज के गोल्डन रॉक के 3 ऑप्शंस। कायदे प्लस कानून ये है कि 3 ऑप्शंस आपको हम बताएंगे गानों के, जो कि होंगे जो ऑप्शन आपके दिल को पसंद आए, दिल की बत्ती को जलाए, उसे आप हमें वोट की तरह कास्ट करें, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट्स हमें रिसीव होंगे वो गाना भारी मतों के साथ हमेशा की तरह आज बनेगा आज का गोल्डन राग। तो ऑप्शन ए है आज के गोल्डन राग के 3 ऑप्शंस में से एक, ऑप्शन ए फूल आहिस्ता फेंको, फिल्म का नाम है प्रेम कहानी। ऑप्शन बी है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, फिल्म का नाम है घर। और ऑप्शन सी है छेड़ो ना मेरी जुल्फें, फिल्म का नाम है गंगा की लहरें। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए है फूल आहिस्ता फेंको, फिल्म का नाम है प्रेम कहानी। ऑप्शन बी है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है फ्रॉम द फिल्म घर, एंड ऑप्शन सी छेड़ो ना मेरी जुल्फे, फिल्म का नाम है गंगा की लहरें। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। अगला गीत हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक कैफी आजमी साहब की खूबसूरत लिखावट के साथ जमा हुआ, सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल। यहीं पर मिलेगा आपको सुरों का डबल डोज।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 1 पाउंड के बदले मिल रहे हैं इंडियन करेंसी में, भारतीय मुद्रा में 126 रुपए, 126 रुपीज एंड 50 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Hi, clairvoyance here. How may I be of prediction?
3: I'm wondering about my future retirement.
2: You and me both. Well, I'm seeing an app, the HMRC app. You open it and there it is, your state pension forecast.
3: What about gaps in my national insurance record?
2: Well, you can see and fill those. Oh, and it's handy for tax refunds.
3: Right, thanks.
2: The pleasure's yours. Now download the HMRC app for your money and tax. You're on it.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
7: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
6: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
7: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
6: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
7: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: ऐसी नजर।
1: क्या कमाल का गीत है भाई। अर्थ फिल्म का ये खूबसूरत सा नगमा सुन रहे थे हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक कैफी आजमी साहब के लिखे हुए बोल। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूंगा आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस, जिन्होंने नहीं सुना है वो फिर से सुन लें। ऑप्शन ए है फूल आहिस्ता फेंको, फिल्म का नाम है प्रेम कहानी। ऑप्शन बी आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं, फ्रॉम द फिल्म घर। ऑप्शन सी छेड़ो ना मेरी जुल्फे, फिल्म का नाम है गंगा की लहरें। वोटिंग लाइंस ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें और पुकारते रहें। अगला गीत रफी साहब की आवाज में।
2: लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मेरे सनम फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे. अगला गाना आ रहा है, बहुत ही प्यारा. सरप्राइज होगा आपके लिए, बहुत कम सुनते हैं आप इस गीत को. खास तौर पर मेरे प्रोग्राम में जब भी अनीसा जी का शो करने का मौका मिलता है, मैं इस गाने को जरूर प्ले करता हूँ विदाउट एनी फेल. सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: Like a radio network has confirmed a partnership with the premium hospitality brand Raghasan. Details at likearadio.com.
3: Like a radio network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits.
4: Tasty track of the hour. Brought to you by Coca Noodles.

0: से।
1: क्या बात है भाई।
2: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: मुझे तुम नजर से, मेहंदी हसन साहब की खूबसूरत आवाज में। और अगला गीत आपको बहुत इमोशनल करने वाला है। हालांकि सुपर संडे वाली महफिल में ये गीत आपको नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन ये गीत ही ऐसा है, आपको पुरानी यादों के दौर में ले जाएगा। छोटे से ब्रेक के बाद अगला गीत मुकेश साहब की आवाज में, सुनते रहे।
3: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: The movie is starting. Turn off your phones.
5: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
6: Destinies? What destinies?
5: Bringing everyone to the movies. Because I decide people only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
4: Alexander, phone off.
5: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
7: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays and Wednesdays, ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
8: ये है Like a Gold TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley। Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com। Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com।
9: TravelHub, best service with unbeatable price
8: at all protected।
9: Visit TravelHubWorld.com.
10: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the The New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
11: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
12: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
11: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
13: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
1: ये तो बताओ, कोई पता चला?
2: गुरु गुरु,
3: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
4: साधु, तो शुभकामनाएं में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
1: शीघ्र शीघ्र।
3: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
5: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन।
8: On Rug with Golden Rug.

0: मुकेश साहब की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला ये गीत पुष्पांजलि फिल्म से था। और इसी के साथ आपको बताना पड़ेगा कि भाई आज के लिए हो चुकी हैं वोटिंग लाइंस बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। हालांकि बड़ा कंफ्यूजन था, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन जो जीता वही गोल्डन राग। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127.47 अफगानी 85.91 पाकिस्तानी रुपीस 366.79 बांग्लादेशी टका 162.96 श्रीलंकन रुपीस 437.81 एंड 1 US डॉलर 1.32.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £100.60 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Like a radio. Now in more places than ever before. Birmingham, Bradford, Huddersfield and Leeds.

0: लता जी और किशोर दा की आवाज में छेड़ो ना मेरी जुल्फें, गंगा की लहरें फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त साहब ने फिल्म का संगीत दिया था और मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने फिल्म के गानों को आकार दिया था। और ये गीत वैसे आपको बता दें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के बीच में बड़ा तगड़ा मुकाबला था, एक दो वोटे से आगे पीछे रह गए, लेकिन कोई बात नहीं, जो जीता वही आज का गोल्डन राग। संतोष जी सब से पहले नाम लेते हैं, संतोष जी हमेशा अव्वल रहते हैं। मनोहर, मनु, नंदा, प्रवीण जी, अमिता जी, रानी सुनाही जी, प्रज्ञा जी, किशोर लाडवा, माला जी, दिव्या फ्रॉम हैरो, उल्लास जी, करसन पिंडोरिया, हरप्रीत जी, नीलकंठ साहब, तरला मुजारिया, सुमित चौरसिया, पंकज वर्मा, कंचन और करण साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। होगी आपसे अगले सप्ताह नेक्स्ट वीकेंड मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। नेक्स्ट आ रही सरिता जी, उनके साथ भी बने रहें और सुनते रहें लाइका रेडियो नेटवर्क। टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
3: Lights on, shutters up, staff ready.
2: But today's customers don't start on the high street.
3: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
2: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
3: They walk into your competitors.
2: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
3: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: Sunshine, skyscrapers and souks
5: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
4: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
5: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
4: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
5: Southall Travel. At all protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: लंदन, गेट रेडी फॉर an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
8: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
8: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
8: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
9: Do you know you can open your NRE and NRO account from the comfort of your home by requesting us for a home visit? You can also visit any ICICI Bank UK branch or call us at 0344 412 4444. You will be transaction ready with immediate access to a debit card and a checkbook. Just reach out to ICICI Bank UK and they have a solution for your banking in the UK or in India. ICICI Bank UK.
10: ICICI Bank UK is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
11: NRI products and service are subjected to Reserve Bank of India and applicable laws in India. TNCs apply.
12: Watford mein dinner plans. Thoda classy, thoda desi.
13: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
12: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
13: Friends, family, या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
3: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट। क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। डैनी प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन।
14: Danube 11, 11.
15: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place.
16: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
17: Danube 1111, Danube Properties, Danube 1111.
16: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday's scenic Swiss tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
18: Next, Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
19: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: तेरे चेहरे की मुस्कान फूलों से भी प्यारी है, तेरे चेहरे की मुस्कान फूलों से भी प्यारी है, तू पास हो तो हर शाम हमारी है। तेरी खुशबू से महक उठती है मेरी दुनिया, तेरी खुशबू से महक उठती है मेरी दुनिया, तू ही मेरी मोहब्बत, तू ही जिंदगी हमारी है। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन, तो चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इन्जॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता, सिर्फ सिर्फ आप ही के लिए। कुछ तो कॉमन है आज के गीतों में, अगर आपने जान लिया है तो जवाब दे सकते हैं। और अगर ये गीत आपके मन को भा गए हैं, आपकी किसी भी इमोशन को इन्होंने छू लिया है, टच कर लिया है और आपको कुछ याद दिला दिया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे हमेशा आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहता है। वैसे मेरी स्क्रीन फुल है आपके मैसेजेस से, थैंक यू एवर सो मच। इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहिए। मेरे बहुत से साथियों ने तो बता भी दिया है क्या कॉमन है आज के गीतों में। हाँ, इस वर्ड पे अगर आपको कोई ख़ास गाना याद आ रहा है जिसके साथ आपकी कोई याद जुड़ी है तो बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो गीत प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। सो फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, खुशबू की तरह महकते रहो। ज़िंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हर मौसम में बस खिलते रहो, मुस्कुराते रहो और महकते रहो। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, SBI UK के जरिए अगर पैसे आप इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कराना चाहते तो काम बहुत ही आसान है। You can walk into the branch, you can go online और SBI Yono mobile app अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है अपने टेलीफोन पर तो घर बैठे पैसे ट्रांसफर कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर। तो आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू 126 रुपीज एंड 50 पैसास।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: इस नवरात्रि भक्ति और गरबा का महा उत्सव
4: परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरुजी के सानिध्य में
3: सिद्ध आश्रम शक्ति सेंटर प्रेजेंट्स ट्रेडिशनल नवरात्रि
4: 10 से 20 अक्टूबर हैरो लेजर सेंटर के बायरन हॉल में। यूके में पहली बार
3: भारत से आई पवित्र अंबाजी ध्वजा के दर्शन।
4: दिशा पटेल और युतिका बारोट के साथ खेलिए गरबा
3: शाम 7 बजे। डोर्स ओपन।
4: पासेस बुक करें siddhashram.com और कॉल 02284260678।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: લંડન હાલો ગરબે ગુમવા શ્રી 27 ગામ પાટીદાર સમાજ યુરોપ સાથે માણો નવરાત્રિ ભારતના લાઇવ બેન્ડ સાથે 10-20 ઓક્ટોબર સાંજે 7:30 થી એટ 27 પાટીદાર સેન્ટર વેમ્બલી એડલ્ટ ટિકિટ્સ 10 પાઉન્ડ 16-17 અને 18 ઓક્ટોબરે 15 પાઉન્ડ 5-10 વર્ષના બાળકોને 5 પાઉન્ડ અંડર 5 ફ્રી 11 રાતનો સીઝન પાસ 100 પાઉન્ડ રેડિયો પાર્ટનર લાઇકા રેડિયો નેટવર્ક 27 ગામ પાટીદાર સમાજના ગરબા એટલે બેસ્ટ बेस्ट।
3: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा।
7: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम।
3: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
7: रात 8 बजे से देर रात तक। टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट। 5 साल से छोटे बच्चे फ्री।
3: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए। टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
7: 07956458872।
3: तो मिलते हैं गरबा में।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: कितना प्यारा गाना था, लता मंगेशकर एंड महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म प्यार की है जान। 1966 में आई थी ये फिल्म, याद है आपने कब किसके साथ देखी थी और क्या आपके वो भी आपके लिए यही गीत गाया करते थे और जवाब में आप भी कुछ ऐसा ही कहा करते थे? अगर हाँ तो बता दीजिए। इंतशाब, आपने फूल फिल्म का एक गीत सुनना चाहा है, मेरी कोशिश रहेगी प्रोग्राम में शामिल करूँ। नेक्स्ट आवर में मैं शैलेंद्र सिंह के गाए हुए कुछ गीत शामिल करना चाहूँगी। शैलेंद्र सिंह इज़ सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे और फिर संध्या शांताराम उनकी डेथ एनिवर्सरी पुण्यतिथि आज के दिन लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई थी तो उनकी भी फिल्मों के कुछ एक गीत शामिल रहेंगे इन द थर्ड आवर। देन कौन सी फिल्म आज के दिन रिलीज़ हुई थी उसके बारे में भी बताऊंगी। सो बहुत कुछ है प्रोग्राम में। आपको मालूम है कि 90s के ज़्यादा गाने नहीं सुना पाऊंगी मैं, पर जो भी सुनाऊंगी मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को ज़रूर पसंद कर रही हैं और करती भी रहेंगी। ये बता दूँ कि ये प्यार किए जा वाला गाना किसने आप तक पहुँचाया?
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold 10:35 am.
0: इंतशाब के साथ साथ सुमीला मुंगर जी, हरप्रीत संधू सिद्धू एंड अर्जन जी, विजय गुजरे, संतोष फ्रॉम हैरो, मिसी शेख फ्रॉम स्लाव, अमिता जी, उल्लास फ्रॉम टोरंटो, सहर, संध्या भावसर, फरीदा गुलाम अली जी, जैस्मिन जी, दिव्या फ्रॉम हैरो, मनु जी एंड प्रीतम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कौन हैं? सुशील जी, थैंक यू। इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिए, अगला गाना भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। लता जी एंड मुकेश जी की आवाजों में गाया हुआ ये गीत किस फिल्म से जरा याद कीजिए।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: फिल्म तो आपने ज़रूर देखी होगी, वो ज़माना 1975 का, 70s में छाए हुए थे कौन, राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना ने इस फिल्म में काम किया था, राज खोसला साहब ने इसे डायरेक्ट किया था फिल्म को, नाम था फिल्म का प्रेम कहानी। और राजेश खन्ना के साथ साथ इस फिल्म के हीरो शशि कपूर भी थे, और दोनों का ही बहुत खूबसूरत काम था, लव ट्राइंगल कहानी थी, है ना। स्टोरी आपको मालूम ही होगा कि किस पर बेस्ड थी और किसने बनाई थी ये फिल्म, सब कुछ याद होता है आप सभी को। तो इस फिल्म के सारे गाने बड़े मशहूर हुए थे, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। चल दरिया में डूब जाएं, वो गाना भी बहुत प्यारा था। देन प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोस्तों में कोई बात चल पड़ती है, नदिया से बिछड़ा, वो वाला गाना भी, एंड प्रेम है क्या। तो ऐसे बहुत सारे गाने थे और सारे बहुत अच्छे गीत थे। आपको पसंद आया ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी चॉइस आपकी चॉइस बन ही जाती है ना। वेल, बहुत से गीतों की फरमाइशें आपकी तरफ से भी आई हैं और कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपकी पसंद को भी पूरा कर पाऊँ। फरजाना जी थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत आई हैं आप भी, तो स्वागत है आपका भी।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: शिव हरि का संगीत और लता जी का साथ दिया अभिजीत भट्टाचार्य ने। ऐसे गीत सुनकर मेरे साथी खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं एक गीत तो होना चाहिए सरस्वती चंद्र का, तो थोड़ा इंतजार कीजिए।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Here at the Money Supermarket Training Academy, we're planning a revolution.
3: We're bringing down the establishment.
2: Not quite. It's a revolution in investing. We're making investing easy for everyone, and we're saving them from high fees. It's investment power to the people.
3: It's anarchy!
2: No, it's investments by Money Supermarket, but I like your enthusiasm.
4: Download our app to start investing today. Money Supermarket, where better off begins. With investing, your capital is at risk. Money Supermarket Investments Limited is an appointed representative of P1 Investment Services Limited.
5: ये है लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Visit travelhubworld.com.
7: One performer, countless personalities, a whole universe of entertainment.
8: Sunil Grover, live UK tour 2026.
7: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
8: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
7: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
7: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
10: तेरा क्या होगा रे कालिया?
11: सरदार मैंने पूनम के लड्डू खाए हैं।
10: सारे लड्डू खा गया, एक नहीं छोड़ा। क्योंकि यहाँ से 50-50 कोस की दूरी तक शादी हो या त्योहार, लोग कहते हैं लड्डू हो तो बस पूनम के हो।
12: जब पूनम की स्वीट्स मंगवाली तो हो गई अपनी हैप्पी दिवाली।
13: पूनम स्वीट सेंटर, 86 वेस्टर्न रोड, साउथ हॉल। कॉल 02085744934। डिलीवरी भी अवेलेबल है उबर ईट्स पर।
14: ICICI बैंक मनी टू इंडिया विच इज trusted by millions across 16 countries is now in the UK.
15: Wow! So sending money to India is instant?
14: Yes, from any bank in the UK to any bank in India. Real-time exchange rates, round-the-clock support. Not only this, we also get a preferential rate and zero fees on our first 5 transfers.
16: Download ICICI Bank's Money to India UK app today from the Play Store or App Store. ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA. Terms and conditions apply.
17: Start

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: भी आप सबको भी मेरा प्यार प्यार कबूल हो। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, क्योंकि फिर अगर मैं सलाम कहूँ तो नमस्कार, सत श्री अकाल, यू नो, केम छो, मजा मचेल, दिस एंड दैट, सब कुछ कहना पड़ता है। अब मुझे सारी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, इसलिए मैं शॉर्ट स्वीट कह देती हूँ, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप। सो आप सभी को आज का दिन मुबारक हो। और दो गीत आपने बैक टू बैक सुने प्रोग्राम के इस आवर में। पहला गीत मैंने शोला और शबनम फिल्म से चुना था, 1992 में आई थी ये फिल्म। और इस गीत में आपने देवाशीष की आवाज़ सुनी और उनके साथ साथ शैलेंद्र सिंह एंड अलका याग्निक की आवाज़ें शामिल थी। और दूसरा गीत फिल्म युद्ध से था, 1985 में आई थी ये फिल्म। अलका याग्निक, अमित कुमार और शैलेंद्र सिंह ने ये गीत गाए थे। एंड आज अपना बर्थडे मना रहे, हमारी तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई। 74th बर्थडे पर प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह को हम सभी मिलकर हार्दिक बधाई देते हैं। वो आवाज़ जिसने 70 के दशक के युवाओं को, यूथ को पहला प्यार और शोकी सिखाई। मैं शायर तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा तुम्हें मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई। क्या बात है। बॉबी का गीत था और बॉबी के गीतों से ही राज कपूर साहब ने 1973 में इन्हें मौका दिया और ऋषि कपूर की आवाज़ बना दिया। 73 में राज कपूर की बॉबी सिनेमाघरों में जब आई थी तो सिर्फ एक फिल्म हिट नहीं हुई थी, भारतीय फिल्मी संगीत को कॉलेज के नौजवानों की एक ऐसी ताज़ा, मासूम, बेपरवाह आवाज़ मिली जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। उस दौर में जब मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी एंड मन्ना डे जी जैसी आवाज़ों को, महेंद्र कपूर जैसी आवाज़ों को, ऐसे दिग्गजों का सिक्का चलता था हम कह सकते हैं, तब 21 ईयर्स ओल्ड एक नौजवान ने माइक संभालते हुए सीधे यूथ के, युवाओं के दिलों में दस्तक दी थी। उस सदाबहार आवाज़ का नाम है क्या? शैलेंद्र सिंह। आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। 4th अक्टूबर 1952 में इनका जन्म हुआ था पंजाबी फैमिली में। एंड शैलेंद्र सिंह ने 70s-80s के दशक की फिल्मी संगीत को वो मिठास और अल्हड़पन दिया जिसकी गूंज आज भी हर पीढ़ी के जहन में ताज़ा है। तो अब बहुत कुछ है कहने को, लेकिन क्या करूं, फिर यही होगा कि वक्त ही नहीं बचता है गाने सुनाने का। तो मैंने बॉबी के दो गाने क्यों किए हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है। मैं शायर तो नहीं ये गीत सुनना चाहते हैं, या फिर मुझे कुछ कहना है, या फिर नहीं, आई थिंक एक कमरे में बंद नहीं, आ छोड़ देते हैं आज हम अकेले रहते हैं, पर मैं शायर तो नहीं और मुझे कुछ कहना है, इन दोनों गीतों में से कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है? ए, मैं शायर तो नहीं, या बी, मुझे कुछ कहना है? जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप इंडिया में कहीं भी पैसे भेजना चाहते हैं तो काम बहुत आसान है। You can go in the branch, you can go online, या फिर आपने अगर डाउनलोड किया हुआ है ऐप तो घर बैठे भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज देयर। 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू टुडे 126 rupees and 50 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you have a better laptop like the Dell XPS powered by Intel Core, it feels better. With thin and light design, it feels smooth. With a touchscreen, it feels fast and precise. And with long-lasting battery life, it feels like non-stop energy. Yeah, that's definitely better. Built for those who want better. The Dell XPS. Built for you.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics.
3: Like a gold. London, get ready for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
3: comes to the O2 Arena, London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
3: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
3: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: करम सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
6: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
5: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
6: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
5: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
6: 07956458872
5: तो मिलते हैं गरबा में
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
8: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danube Properties London office today on 02 03 963.

0: शैलेंद्र सिंह, ये गीत कितना पॉपुलर हुआ था मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ये गीत आप तक पहुंचाया किसने?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: ye hai
4: like a gold
1: tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: जी हाँ, कोका नूडल्स का ये गीत शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक बातें बताना चाहूँगी। शैलेंद्र सिंह बचपन से ही गाते थे, लेकिन उनकी जो सपना था वो एक अभिनेता बनने का था। वो पुणे स्थित जो FTT है वहाँ पर, FTII, वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया और एक्टिंग सीखने भी लगे। उसी दौरान शोमैन राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए फिल्म बॉबी 1973 में उसकी तैयारी में जुटे थे। एंड फिर उन्हें एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी जो कि ऋषि कपूर को सूट कर जाए। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर से शैलेंद्र सिंह की मुलाकात करवाई, और जब शैलेंद्र सिंह ने अपनी सहज सी बहुत ही सीधी सी आवाज़ में गाकर सुनाया तो राज कपूर तुरंत समझ गए कि ऋषि कपूर को यही आवाज़ सुने सूट करेगी। एंड उन्होंने उसी टाइम उन्होंने साइन किया। बॉबी का क्या हुआ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। बॉबी का तूफान जो था वो सबके सर पर चढ़कर हावी हुआ था, और फिल्म बॉबी के संगीत ने देश भर में धूम मचा दी थी। मैं शायर तो नहीं, आनंद बख्शी साहब के बोल, शैलेंद्र सिंह की मखमली आवाज़ और उनका अंदाज, इस गाने को युवाओं ने एक एंथम बना दिया था। झूठ बोले कौवा काटे, मुझे कुछ कहना है, ना मांगू सोना चांदी, लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के गाए हुए इन नगमों ने उन्हें रातों रात स्टार प्लेबैक सिंगर की कतार में खड़ा कर दिया था। इस पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला था। एंड ऋषि कपूर की ऑन स्क्रीन पहचान और मल्टी स्टारर कल जो थी वो शैलेंद्र की आवाज़ बन गई थी। और बहुत से इन्होंने गीत गाए, उन्हीं में से एक गीत और मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये गीत है फ्रॉम द फिल्म चलते चलते, और साथ ही

0: ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं और ये गीत मैंने फिल्म चलते चलते से चुना था। 1976 में आई थी ये फिल्म एंड शैलेंद्र सिंह की आवाज़ का जादू 1970 से लेकर 80s तक तो बहुत चला था। एंड अमर अकबर एंथनी 1977 में इस फिल्म में के सबसे बड़े क्लाइमेक्स टाइटल ट्रैक में भी शैलेंद्र सिंह ने ऋषि कपूर के हिस्से को आवाज़ दी थी, अनहोनी को होनी कर दे। यस, याद आ गया वो गाना। देन परवरिश 1977 में मनमोहन देसाई की इस हिट फिल्म में भी हम प्रेमी प्रेम करना जाने, ये गीत भी किशोरदा के साथ मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ऋषि कपूर की आवाज़ में जो बिट था वो किसने गाया था, वो गीत गाया था शैलेंद्र सिंह जी ने। आज बर्थडे मना रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ मैं आपको चॉइस देने जा रही हूँ दो और गीतों की। फिल्म सुहाग के दो गीतों में से भी मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ, तेरी रब ने बना दी जोड़ी वो सुनना चाहेंगे या ए यार सुन यारी तेरी, कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, ए और बी। और जिन्होंने बॉबी के गीत के लिए वोट्स दिए थे उन सब ने अपनी अपनी पसंद सुन ली। रानी इंसलाव, धनसुख जी, निन लूटन, अर्जुन जी, सोनी रावल जी, हरप्रीत जी वैंकूवर में, एंड विजय गुदरोई एंड हना, आप सबने उसी गाने को सुनना चाहता। और ये गीत प्यार में कभी कभी किसने आप तक पहुंचाया?
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स। दिस इज सरिता सांबरवाल ऑन लाइक अ गोल्ड।
0: और सरिता आपको अब बताने जा रही है कि लखविंदर वडाली आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट। पंजाबी लेजेंड लखविंदर वडाली फ्राइडे 16 अक्टूबर को क्रिस्टल ग्रैंड स्लाव एंड संडे 18 अक्टूबर को ICC बर्मिंगम में परफॉर्म करने जा रहे हैं। और कविता कृष्णमूर्ति इज लाइव इन रॉयल एल्बर्ट हॉल, आप तक पहुँचा रहे हैं सनातन इवेंट्स वाले। और अगर आपने दिवाली स्पेशल का प्रोग्राम भी देखने जाना है और उसके बाद दिवाली स्पेशल तो आप देख आए होंगे, दिवाली स्टोरी जो थी, पर ये दिवाली स्पेशल शो हो रहा है जिसमें कविता कृष्णमूर्ति परफॉर्म करने वाली है। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: सरिता सांबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका गोल्ड।
0: जी हाँ, कोशिश तो यही रहती है बिगेस्ट हिट्स आप तक पहुँचाऊँ, वो गाने जो आपके दिल के करीब है। सुहाग की तेरी रब ने बना दी जोड़ी सुनना चाहते हैं या फिर दूसरा वाला ए यार सुन, जल्दी से अपने वोट्स दीजिएगा। नसीब का गाना, ऑल स्टार का गाना रंग जमा के, उसमें भी शैलेंद्र की आवाज़ थी, सागर के गीतों में भी उनकी आवाज़ थी।

0: सेलिब्रेट विद हल्दीराम्स
1: पंजाबी छोले राजमा रसीला यमी दाल मखनी आलू मटर सरसों दा साग एंड मोर
0: फेस्टिव फेवरेट्स रेडी टू ईट शॉप एट हल्दीराम.uk.com और एट योर नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर
2: हल्दीराम्स
3: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

ये गीत हमें न्यूज़ के बिल्कुल करीब ले आया है। शैलेंद्र सिंह को एक बार फिर से हम बहुत बहुत बधाई देंगे। हैप्पी बर्थडे टू शैलेंद्र सिंह, ही 74 टुडे। न्यूज़ के उस पार आपसे मुलाकात।

बाय द वे कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, आप ही के साथ हूँ टिल 7 o'clock. और 7 बजे के बाद आते हैं सैंडी शाह विंटेज गोल्ड लेकर, और फिर उसके बाद गोल्ड नाइट्स.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत फिल्म फूल से मैंने चुना था और हमारी प्यारी सी इंतशा आप सुनना चाहती थी इस गीत को, तो मैंने इस आवर में शामिल कर दिया। एंड बहुत सारी फरमाइशें थी इस गीत के लिए भी, फिल्म आरजू का गीत आप सुनना चाहते थे वो भी मैंने प्रोग्राम के लास्ट आवर में शामिल कर ही दिया। जिनकी भी ये फरमाइश थी उन सब ने जान लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ज़हीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, थैंक यू। एंड अगर आप भी साइलेंटली प्रोग्राम को इन्जॉय करें तो अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कहाँ बैठे प्रोग्राम सुन रहे हैं। वैसे तो हम हर जगह सुनाई देते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे आपने अगर हमारा ऐप टेलीफोन पर डाउनलोड किया हुआ है तो किसी भी कंट्री में बैठे दुनिया के किसी भी कोने में हमें सुन सकते हैं। लाइका रेडियो का ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको चॉइस मिलेगी लाइका रेडियो, लाइका मैनचेस्टर, लाइका गोल्ड, देन हमारे लाइका रेडियो 90s के गाने सुन सकते हैं, पंजाबी रेडियो सुन सकते हैं, बहुत सारे। और अगर आप वैसे ही प्रोग्राम सुनते हैं 10:35 पर लाइका गोल्ड सुना जाता है, एंड मैनचेस्टर में सुनते हैं आप, DAB पर भी सुनते हैं, तो जिस भी जरिए को आपने चुना है उम्मीद करती हूँ कि सभी तक ये आवाज़ लाउड एंड क्लियर पहुंच रही है। और मेरी आवाज़ की तारीफ करने वाले, थैंक यू सो मच, आवाज़ पे मेरा बस नहीं, ये ऊपर वाले की देन होती है। लेकिन हाँ, अखलाक जो होता है वो हमें अपनी संस्कृति, अपने पेरेंट्स से मिलता है, और किस हम जैसे माहौल में रहते हैं उसी तरह से हमारी बोलचाल भी बन जाती है। थैंक यू आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए, इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए। और अब अगला गीत मैंने चुन लिया है कैफ़ी आसमी साहब का लिखा हुआ, फिल्म सत्यकाम से। आज मैं कोई चॉइस नहीं दे रही हूँ इस गीत में या इस गीत के किसी और गाने से के साथ, तो मैंने चुन लिया है दो दिन की ज़िंदगी। बहुत दिन हो गए मैंने ये गाना प्ले भी नहीं किया और बहुत दिन हो गए इस गाने को सुना भी नहीं है। एंड शर्मिला टैगोर इज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट, मुझे वन ऑफ माई फेवरेट्स अब मैं कहूँगी। मुझे नंदा भी बहुत अच्छी लगती थी, वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती थी, एंड ऑफ कोर्स शर्मिला टैगोर, मुमताज़ सभी अच्छे लगते हैं, राइट। एंड अब दो गानों की चॉइस दे रही है सरिता। आज मैं अब जैसे कि आपको अर्लियर भी बताया था कि संध्या शांताराम जी को हम याद करेंगे, तो उनकी फिल्म सहरा से मैंने दो गाने चुने हैं, पंख होते तो उड़ा थी ये गाना सुनना पसंद करेंगे, या तुम तो प्यार हो सजना मुझे तुमसे प्यारा, और नहीं मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ों में गाया हुआ ये गीत है। तो कौन सा गीत आपके दिल के ज़्यादा करीब है, पंख होते तो उड़ाती या फिर तुम तो प्यार हो सजना? दोनों में से जो गाना आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दें। मीनवाइल आई विल डू दिस वर्क।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है। एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले आपको 126 रुपीस एंड 50 पैसा मिल सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर, कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करते हैं इस पे डिपेंड करता है। और काम बहुत आसान है, कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यू कैन वॉक इन टू द ब्रांच, इसके अलावा ऑनलाइन या फिर आपने अगर ऐप डाउनलोड किया है योनो SBI योनो ऐप, तो उसके जरिए घर बैठे भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: When you have a better laptop like the Dell XPS powered by Intel Core, it feels better. With thin and light design, it feels smooth. With a touchscreen, it feels fast and precise. And with long-lasting battery life, it feels like non-stop energy. Yeah, that's definitely better. Built for those who want better. The Dell XPS. Built for you.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a
3: Gold. Listen to that. The kids are finally in bed. Ah, time to sit back, relax, and crack open the HMRC app. Because now I've got 5 minutes peace, I can sort out child benefit and get round to updating things like our new address. It's handy for claiming tax refunds too. For your money and tax, download the HMRC app. You're on it.
4: सत समाज यूके के साथ मनाइए नवरात्रि गरबा
5: 11 से 20 अक्टूबर तक 10 रातों का जश्न और 24 अक्टूबर को स्पेशल शरद पूनम
4: आइए नक्षत्र हॉल फेल्थम TW13 7NA
5: रात 8 बजे से देर रात तक टिकट सिर्फ £5 पर पर्सन पर नाइट 5 साल से छोटे बच्चे फ्री
4: फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए जमकर गरबा खेलिए टिकट्स और जानकारी के लिए महेंद्र भाई को कॉल करें
5: 07956458872
4: तो मिलते हैं गरबा में
6: Sunshine, skyscrapers and souks.
7: For less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
6: Flying direct with Emirates so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
7: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
6: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
7: Southall Travel. At all price. Protected.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
8: ये तो बताओ कोई पता चला
9: गुरु गुरु
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
9: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है
10: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
8: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
11: शीघ्र शीघ्र
10: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
12: टू बुक कॉल 0208 514 54 Book online at Eventbrite.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
14: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
15: वॉटफुट में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
16: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
15: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
16: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफुट कॉल 01923227274 बुक योर टेबल टुडे

0: What a beautiful song. और बहुत से मेरे साथियों ने लिखा, हमने पहली दफ़ा इस गीत को सुना है। सत्यकाम था फिल्म का नाम, ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई थी और रजिंदर सिंह बेदी जी ने डायलॉग्स लिखे थे इस फिल्म के। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, अगर नहीं देखी जब मौका मिले ज़रूर देखिएगा। अशोक कुमार, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम किया था। फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा पजल कंफ्यूज हो गई थी कि ये कैफी साहब ने लिखा, क्योंकि आनंद बख्शी साहब ज़्यादातर गीत लिखते थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए, पर ये गीत लिखा था किसने, कैफी आसमी साहब ने, जो आर्टिस्ट ऑफ द वीक थे। और अब
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।
0: राइट भी, इस गीत के साथ साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी हिंदी और मराठी सिनेमा के इतिहास में। ये तारीख हमेशा एक गहरी उदासी के साथ याद की जाती है, 4 अक्टूबर 2025 में हमें छोड़कर गई थी संध्या शांताराम। इसी दिन अपने जन्मदिन की कुछ ही दिनों बाद भारतीय सिनेमा की महान डांसर, दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। महान फिल्म का वी शांताराम की पत्नी, लेकिन अपनी कला और प्रतिभा के दम पर भारतीय सिनेमा के लिए एक अलग और अमिट पहचान बनाने वाली कलाकार। इन्होंने 3 बत्ती 4 रास्ता, झनक झनक पायल बाजे, 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग, स्त्री, सेहरा, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, पिंजरा जैसी फिल्मों में काम किया।

0: 1971 में आई थी ये फिल्म, जिसका नाम था जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। और इस फिल्म में संध्या ने नृत्य की ऐसी कल्पनाशील दुनिया रची थी जो उस दौर के लिए बहुत बहुत बहुत नई थी। एंड कजरा लगा के में मोर और सांप के जोड़े के बीच संघर्ष और जो डांस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, ये बेहद कठिन नृत्य क्रम था, बहुत मुश्किल था, लेकिन संध्या ने पूरे समर्पण के साथ इसे निभाया था। और उनके हाव भाव, शरीर की गति और लय ने इस असाधारण दृश्य को यादगार बना दिया। इसी फिल्म का शीर्षक जो नृत्य था, जो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली, वो भी बहुत अनूठा सा था और बहुत प्यारा गीत था और बहुत ही अच्छा इन्होंने डांस किया था। संध्या ने इसमें मछली जैसे गति और लय को अपने डांस में उतारा था और उनके लहराते हाथ और हर तरह की इनकी जो एक्शन से बहुत खूबसूरत थे। तो संध्या जी को याद किया हमने इस गीत के जरिए। अभी भी मेरे बहुत से साथी सुनना चाहते हैं पंख होते, और कुछ ने लिखा है हमें चाहिए वो कौन सा वाला गीत, दूसरा तुम तो प्यार हो, तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। तो प्लीज़ थोड़े से और मैसेजेस आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं। अभी बराबर वोट्स हैं। और ये बता दूँ कि जल बिन मछली वाला गीत आप तक पहुँचाया।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: London's biggest classics all day. Like a gold.
0: आइए भी आपको साउथ हॉल ट्रैवल वालों का ये मैसेज आप तक पहुंचा दें, पर ये मैसेज है नहीं यहाँ पर, तो क्या मैसेज है? चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं ये। मैसेज ये है कि साउथ हॉल ट्रैवल्स अफोर्डेबल दुबई ऑफर्स कंबाइंस एक्सक्लूसिव डील्स एट सेलेक्टेड पार्टनर्स होटल्स विद डायरेक्ट फ्लाइट्स विद एमिरेट्स फ्रॉम जस्ट £629 पर person for 3 nights travel by 10th December. Call South Hall Travel on 0208-843-4444 or visit southholltravel.co.uk.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southholltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Chase gives you 2% cash back on your everyday spending.
4: Every day? Like Monday's train to work?
3: Yes.
4: Tuesday's big shop?
3: Yes again.
4: Wednesday's coffee treat?
3: Yes, cash back.
4: Thursday's lunch, Friday's brunch and Saturday's takeaway?
3: Yep, yep and yep.
4: Super.
3: Oh, nothing on Sundays.
4: I take it easy.
3: Lovely. Enjoy 2% cash back on debit or credit card spending on groceries, restaurants, everyday transport and fuel. Search Chase Bank. 18 plus UK residents. Chase current and saver accounts required. Maximum £20 per month. Eligibility qualification. Exceptions and T's and C's apply.
5: Like a goat. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
8: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
7: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: London, तैयार हो जाओ। आ रहा है सेगा नवरात्रि 2026।
9: 9 से 10 अक्टूबर प्री नवरात्रि
1: और 11 से 19 अक्टूबर नवरात्रि का जश्न।
9: काजल पांड्या और अविनाश बारोट के साथ लाइव म्यूजिक पर झूमो, गरबा खेलो।
1: 17 अक्टूबर किड्स गरबा और 24 अक्टूबर शरद पूनम गरबा भी।
9: मिलते हैं एशियन कम्युनिटी सेंटर, व्हाइट हार्ट रोड, लंदन, SE18 1DG।
1: टिकट बुक करो sega.london.co.uk।
9: सेगा नवरात्रि, भक्ति, मस्ती और गरबा। We'll be right back.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee. Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
2: Share festive sweetness with Haldirams.
3: Kaju Katli, Coconut Barfi, Gulab Jamun, Mysore Pak, Milk Cake, Rasgulla and more. A taste of home.
2: Shop at Haldirams. HaldiramsUK.com or at your nearest grocery store.
4: Haldirams.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
6: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com. टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: इन गीतों के जरिए हम संध्या शांताराम जी को याद कर रहे हैं. संध्या शांताराम के नृत्य की सबसे बड़ी खूबी शायद यही थी कि वो केवल नृत्य नहीं करती थी, डांस नहीं करती थी, वो डांस के माध्यम से कहानी कहती थी. उनकी आंखें डायलॉग्स करती थी और उनके हाथ भाव व्यक्त करते, जैसे यू नो सब फेस एक्सप्रेशंस, हैंड्स इन के मूवमेंट जो थी वो सब एक तरह से एक्टिंग करते थे. उनके कदम कहानी को आगे बढ़ाते थे और क्लासिकल नृत्य की परंपरा को सिनेमा की भाषा में ढालकर उन्होंने एक ऐसी शैली विकसित की थी कि जो अपने समय से कहीं आगे थी. 4 अक्टूबर 2025 में उनका देहांत हुआ. वो हमारे बीच नहीं रही हैं लेकिन अपनी कला के ज़रिए वो हमेशा हम में जीवित रहेंगे. ये थी एक ट्रिब्यूट छोटी सी भी संध्या शांताराम जी के नाम.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you today. Kitne paise LemFi wale de rahe hain? Indian rupees 197.46, Pakistani rupees 366.74, Bangladeshi taka 162.95, Sri Lankan rupee 437.82 and US dollars 1.32.
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: It's £100.60 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: निशा नासिर लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 10 रात बिग शो में जारी रहती है. बिग शो सुनना भूलिएगा मत.
3: ये है
5: लाइका गोल्ड.
1: भाई सरिता भी बहुत कुछ बताना चाह रही थी. आज के दिन फिल्म रिलीज हुई थी राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की. फिल्म का नाम था बाबू एंड इस फिल्म का संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने, लेकिन मैं आज ये गीत नहीं शामिल कर पाऊंगी क्योंकि समय का अभाव है. और एक सूचना और देनी थी कि गुफी पेंटल, आप सभी जानते होंगे महाभारत के यादगार शकुनी मामा, उनको भी हम सादर नमन करते हैं. अभिनेता और कास्टिंग डायरेक्टर गुफी पेंटल जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. शकुनी का रोल तो उनका इतना खूबसूरत था कि कभी भुलाया नहीं जा सकता है. और इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1944 को लाहौर में एंड असली नाम था सरबजीत सिंह पेंटल. तो एक श्रद्धांजलि उनके नाम. अब मेरे जाने का वक्त है और कोई बात नहीं करने का वक्त है. अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीकेंड. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है, फिल्म नवरंग से चुना है. अब मेरे बाद सैंडी शाह आ रहे हैं आपके लिए विंटेज गोल्ड लेकर. उसके बाद आप हमारी गोल्ड नाइट्स का मज़ा लेंगे और फिर कल शुरू हो जाएगा वही सिलसिला. मंडे काजल आ जाएंगी ब्रेकफास्ट शो लेकर. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. जैजीज होंगे Manchester me. Bye bye, take care.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay. Get
2: Ready UK. Sunil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: चनिया चोली रेडी, डांडिया रेडी, तो बस अब आपकी कमी है।
7: ओम इवेंट्स प्रेजेंट्स यूनाइटेड रास 2.0 आकांक्षा शाह के साथ 9 से 18 अक्टूबर द विलोज फॉरेस्ट रोड इलफर्ड IG6 3SL
5: रात 8 बजे से टिल लेट डे टिकट्स और सीजन पास अवेलेबल
7: बुक नाउ वाया इंटरनेट इवेंटब्राइट और फैटसोमा
5: कॉल प्रथम पटेल 07838302450
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
9: नवरात्रि माँ कृपा फाउंडेशन साथे गरबे घूमवा तैयार थई जाओ
10: 10-19 ઓક્ટોબર દરરોજ સાંજે 7 થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ગરબા અને દાંડિયાની રમઝટ ભારત થી પધારેલા કલાકારો સાથે
9: ટિકિટ્સ મંડે ટુ થર્સડે એન્ટ્રી £5 ફ્રાઇડે ટુ સન્ડે £7 વેન્યુ માં કૃપા ફાઉન્ડેશન હોલ ફર્સ્ટ ફ્લોર યુનિટ 2 10 સ્ટોનફિલ્ડ વે સાઉથ રાઇસલિપ HA40JS
10: બુકિંગ માટે કોલ કરો રશ્મિ શાહ 0772-287-509
9: એ હાલો ગરબે રમવા
6: આઈ કાન્ટ વેઇટ ફોર અવર હોલિડે સન સી નો વર્ક
11: સેમ But how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
6: Not with SimZ. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
11: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
6: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
11: SimZ, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SimZ.com. Terms apply.
12: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
13: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
14: Khakra Crunch भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
16: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
17: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: This is Leica Gold Greater London. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
3: Like a Gold, London का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले Like a Gold और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
4: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
5: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: Falcon Atta is available at Quality Foods, Southall, Hounslow, Hayes, East London.
1: लंडन हेलो गरबे गुमवा श्री 27 गाम पाटीदार समाज यूरोप साथे मानो नवरात्रि भारत ना लाइव बैंड साथे 10-20 अक्टूबर सांजे 7:30 थी एट 27 पाटीदार सेंटर वेम्बली एडल्ट टिकट्स 10 pounds 16-17 अने 18 अक्टूबर 15 pounds 5-10 वर्ष ना बाड़को ने 5 pounds अंडर 5 फ्री 11 रात नो सीजन पास 100 pounds रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क 27 गाम पाटीदार समाज ना गरबा इटले बेस्ट Best.
2: Vintage Gold with Sandy Shah. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. L-Y-C-A. This is Laika.

0: कोई ना,
1: एक की मैं कुफर तो लिया
0: कोई ना,
1: एक की मैं जहर को लिया
0: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना, ओ हट के।

0: बोलिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं कुफर तोलिया
1: कोई ना,
0: रखी मैं जहर कोलिया
1: कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना।
0: ओ बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले।

0: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट ट्रेवल हब world.com
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
3: ये तो बताओ कोई पता चला
4: गुरु गुरु
5: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
4: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है
5: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
3: साधू तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November
6: टू बुक कॉल 0208-514-5400 online at Eventbrite.
7: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: किसने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया, किसने मुझको मेरे घर में आके लूट लिया।
1: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shah.

मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू। थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।